इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में अयोध्या कांड भाग 7। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है?

0: है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
2: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
1: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
3: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय

0: आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
1: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है।

0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इतलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के ओहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के अरकान पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस दो रोजा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने या बंद करने के लिए आजाद हैं। چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی تین رکنی بینچ نے وضاحت کی ہے کہ 28 جولائی کے حکم نامے جس میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت دی گئی تھی کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جن پر سنگین اور گھناؤنے جرائم کے الزامات ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ عدالت ایسے حالات اور طریقہ کار کے لیے ایک ضابطہ مرتب کرے گی جس کے تحت پیلٹ گن کا استعمال کیا جا سکے۔ بینچ نے مزید کہا ہے کہ وہ پولیس کی مبینہ زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے پولیس افسران پر مشتمل ایک خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دینے یا متبادل کے طور پر ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی مزید سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ کی وزارت نے موٹر گاڑیوں سے متعلق مرکزی ضوابط 1979 میں ترمیم کے لیے ایک مسودہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے لیے دو پہیوں والی روڈ ایمبولینس متعارف کرانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس مجوزہ ہنگامی ایمبولینس سروس سے ایمرجنسی کی صورت میں فوری رسائی ممکن ہوگی اور

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुन रहे थे स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया अमीन खान का गायन, राग था मियाँ की टोडी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां पहुंचाते रहते हैं नए नए विशेषज्ञों द्वारा, ताकि वो उन जानकारियों का लाभ उठा सकें और अपने चाहने वालों को भी उससे लाभान्वित कर सकें। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों ने भी ये जरूर सुना होगा कि रमन प्रभाव और सीवी रमन के बारे में। सर सीवी रमन ने जो अपनी ऐतिहासिक खोज की थी रमन प्रभाव की, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। उस इंस्टीट्यूट ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं 29 जुलाई 2026 को। इस इंस्टीट्यूट का क्या महत्व है, खास करके विज्ञान के विकास में, वैज्ञानिक संचार के विकास में और एक वैज्ञानिक विचारधारा के विकास में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की, कि वो किस तरह की संस्था है, क्या कार्य कर रही है, नवाचार उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की क्या भूमिका और महत्व है। इन सब जानकारियों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे। प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के सचिव भी रह चुके हैं। भारत की विज्ञान नीति, अनुसंधान प्रणाली और वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में इन्होंने

0: महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं इस संस्था से जिसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, और उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्रज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं वो उसी सदियों में उसी समय पे आई थी, लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्रज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि भारत ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। तो उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसे हुआ था जिसे रिनायंस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग एक बंगाल रिनायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे।
0: अच्छा।
1: तो मेडिकल डॉक्टर थे और रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहाँ पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी भावना से, एक बहुत स्वदेशी भावना से, महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज 1926 है तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का। और इस संस्थान के साथ काफी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि जगदीश चंद्र बसु जी है, सत्येंद्रनाथ बसु जी है, मेघनाथ सहा जी है, और जैसे कि आपने कहा कि सीवी रामन जी है, उन्होंने भी इसी संस्थान में काम करके हम लोग जिसे रामन इफेक्ट कहते हैं, रामन प्रभाव, उसकी खोज की थी 1928 में, और वो इसी संस्थान में से की थी। जिस संस्थान को एक बहुत स्वदेशी भाव से बनाया गया था कि हमारे देश के वैज्ञानिक यहाँ के काम कर सके, ये जो महेंद्रलाल सरकार जी का जो सपना था वो सीवी रामन जी और मेघनाथ सहा जी ने सभी ने मिलकर उस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दिया। और जैसे कि मैंने कहा कि 150 वर्ष का बहुत ही गौरवशाली समय रहा है इस संस्थान का, और आज भी इस संस्थान में काफी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, काफी अच्छा विज्ञान हो रहा है।
0: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: भारत के ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक जो थे जिन्हें नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ यहाँ पे काम करते हैं। और उसके पीछे कहानी आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही रोचक कहानी है। आपने सुना होगा कि सीवी रमन जी ब्रिटिश सरकार के अकाउंट ऑफिस में थे, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम किया करते थे। तो उन्होंने जब मास्टर्स किया अपना मद्रास में, तो उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और उन्हें नौकरी मिल गई थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। बल्कि उनकी रुचि विज्ञान में थी, पूरी रुचि, उनका मन, पूरे हृदय से वो विज्ञान से जुड़े थे, लेकिन काम करने के लिए तो कहने के लिए तो वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम करते थे। और उस वक्त रमन जी की पोस्टिंग हुई कलकत्ता में, और ऑफिस जाते वक्त एक दिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बोर्ड देखा, और बोर्ड पे लिखा हुआ था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और ये देखते हुए रामन जी के मन में बहुत उत्सुकता उभर कर आई, तो रामन जी पधारे इस इंस्टीट्यूट में और उनका स्वागत किया। उस वक्त वहाँ पे अमृतलाल सरकार जी थे जो महेंद्रलाल सरकार जी के बेटे थे।
0: अच्छा।
1: महेंद्रलाल सरकार जी उस वक्त नहीं रहे, लेकिन अमृतलाल सरकार जी इंस्टीट्यूट का काम देखते थे, और रामन जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे जैसे लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अमृतलाल सरकार जी ने कहा कि जरूर काम कर सकते हैं, आप जरूर रहिएगा और आपको जो कुछ सुविधाएं चाहिए हम उसे आपको उपलब्ध कराएंगे इंस्टीट्यूट में। और उस तरह से 1907 में रमन जी का इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से जो नाता जुड़ा वो काफी लंबे समय तक 1933 तक कलकत्ता में रहे, तब तक वो लगातार यहाँ पे काम करते रहे। 1907 से 1917 तक साल सीवी रामन जी का पूरा दैनिक शैली जो थी एक बहुत ही अजीब जैसी शैली हम मानते हैं।

0: कि इनमें तो अपने दफ्तर में काम करते थे, लेकिन दफ्तर जाने से पहले सुबह उठकर सबसे पहले वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, हम IICS कहते हैं, वहां पे आते थे। वहां पे कुछ अपने प्रयोग वगैरह करने वो वहां पे करते थे, कुछ पढ़ाई करने करते थे। फिर दफ्तर में काम खत्म होने के बाद शाम को फिर IICS आते थे और अपना काम करते थे। 1917 के करीब कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलगुरु आशुतोष मुखर्जी थे, आपने नाम सुना होगा।
1: हाँ हाँ,
0: आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फादर थे, तो उन्होंने रामन जी को देखा और उन्होंने सीवी रामन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पलित प्रोफेसरशिप की ऑफर दी कि आप यहाँ पे आके पलित प्रोफेसरशिप बनो। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में लोगों ने काफी विरोध किया इस बात का, इसलिए कि सीवी रमन के पास पीएचडी डिग्री नहीं थी, वो केवल एमएससी थे। तो इसलिए फिर आशुतोष मुखर्जी ने सीवी रमन जी को एक ऑनररी डिलीट प्रदान की।
1: अच्छा,
0: और डिलीट प्रदान करने के बाद फिर सीनेट ने मंजूरी दी कि वो यहाँ पर पलित प्रोफेसर करके आ सकते हैं। तो दो पलित प्रोफेसर फिर वहां पे उन्होंने काम किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, एक थे प्रफुल्ल चंद्र राय जी और दूसरे थे सीवी रामन जी। उस वक्त बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, ये लाइट या पार्टिकल है या लाइट या वेव है,
1: वेव है।
0: दोनों की काफी चर्चा हो रही थी पूरे विश्व में। तो रामन जी ने अपने मन में एक सोचा कि अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल की अपनी एक ऊर्जा होती है, और ये लाइट किसी अगर मीडियम के थ्रू जाता है, मीडियम के गुजरता है, तो मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि लिक्विड है, कोई द्रव है, उसमें से अगर लाइट का फोटोन जाए तो जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा और फोटोन अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को देगा या उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अपने पास भी लेगा, और ये दोनों हो सकता है। और ये सोचकर रामन जी ने फिर अपने वहां पे प्रयोग किए और इसका फलस्वरूप 28 फरवरी 1928 में रामन जी को एक बहुत बड़ा उनका शोध का कारण मिला। उसका उसके बताया गया कि सही में जो फोटोन है वो एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है अपने लिक्विड के मॉलिक्यूल से, जिसे कि आज हम लोग रामन इफेक्ट से जानते हैं। तो 28 फरवरी 1928 में सीवी रामन ने पूरी दुनिया के सामने में ये घोषणा की कि मुझे एक ये नया शोध मिला है जिसे हम आज के दिन में रामन इफेक्ट से जानते हैं, और इसी शोध की वजह सीवी रामन जी को 1930 का नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ।
1: और उस दिवस को 28 फरवरी को जो है प्रत्येक साल हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कहा जाता है कि जो रामन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों की जो लेबोरेटरी थी उसकी अपेक्षा।
0: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रामन जी ने जीडी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जीडी बिरला जी ने रामन पे विश्वास किया और सीवी रामन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रामन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रामन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रामन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो ले नहीं जा रहे साथ में,
1: स्कैटरिंग।
0: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: इंसा के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए कि किस तरह की संस्था है और किस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी है।
0: ऐसा है कि 1934 में देश के जो मुख्य वैज्ञानिक थे उनके मन में ये भावना आई कि क्यों ना देश में एक ऐसी अकादमी हो जहाँ पे सभी वैज्ञानिक आके खुली तरह से चर्चा कर पाए, विचार विमर्श कर पाए अलग अलग चीजों पर, अगर पॉलिसी हो तो पॉलिसी का विचार करें, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा एक अकादमी होना चाहिए जो बाकी अकादमियों के साथ उसका संबंध हो, या हमारे देश में जो विज्ञान चल रहा है वो सामान्य लोग तक किस तरह एक प्रभावी तरफ से ले जाए। तो ये सब चीजें लोगों के मन में आई, जैसे कि मेघनाथ सहा जी थे, होमी भाभा जी थे, इन लोगों ने मिलकर फिर ये सोचा कि ऐसी एक अकादमी बनाई जाए जिसे आज हम लोग इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है, इसकी स्थापना की गई 1934 में और वो आज तक लगातार चलती आ रही है। अभी 92 साल इसे हाल ही में पूरे हुए हैं और अकादमी में आज के दिन हम करीबन 1100 वैज्ञानिक इससे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी फेलोशिप होती है वो इलेक्शन से होती है, बाकी फेलोशिप बाकी जो फेलोज है इसके वो अलग नए फेलोज को इलेक्ट करते हैं, और इसमें काफी सारे विदेशी वैज्ञानिक भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं और मुख्यतः कई सारे नोबेल परिषद विजेता या फिर कई फील्ड्स मेडल्स के लोग भी हमारे साथ इस अकादमी में जुड़े हुए हैं।
1: क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए थे, विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
0: तो काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो।

0: ब्लड प्रेशर हो ये फैलती नहीं है, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में गए कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहां से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला हजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में एक चीज और बताइए कि आकाशवाणी जैसे माध्यम का युवाओं के अंदर विज्ञान के विचार, विज्ञान के प्रति आकर्षण के लिए, विज्ञान के प्रति उनके जुड़ाव को जोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी के महत्व को बताते हुए?
0: सह की आकाशवाणी के माध्यम से आप तो भारत की पूरी जनता के साथ जुड़े हुए हो, और मेरे लिए अपने आप में बहुत अभिमान की बात है कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को, उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बड़ा आनंद किसी को नहीं होगा कि आज के दिन पूरे विश्व में किसी चीज का ज्ञान ना हो, लेकिन मेरे अनुसंधान की वजह से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अपने आप में बहुत, अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, अपने आप में बहुत अभिमान हम लोग मानते हैं। समझना चाहोगे तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर विज्ञान में आइए, और आप भी देश के अनुसंधान में और विज्ञान को सामने मिले जाने में जुड़िएगा।
1: जरूर, ये बहुत बड़ी बात होगी मानवता के लिए और देश के विकास के लिए भी। प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने एक महत्वपूर्ण संस्थान, जहाँ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्र में अपने योगदान दिए हैं, और सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के बारे में बताया कि किस तरह उस संस्थान में कार्य करके उन्होंने किया, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसने अपने स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे किए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी, आपने इंसा के महत्व के कार्य के बारे में बताया, और युवाओं के लिए आपके प्रेरक प्रसंग, इन सब के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هندو جهان.

يد الله.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. and the Rajya Sabha till 12 noon following repeated disruption by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET paper leak issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. Mr. Birla urged all members to cooperate in running the House, saying that disruption during question hour is not appropriate. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the House. The report of the department-related parliamentary standing committee on housing and urban affairs was tabled. Then Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour amid opposition uproar. Leader of opposition Mallikarjun Kharge raised the matter of alleged theft of donations from the Ayodhya Ram temple. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Congress and Samajwadi Party, which opposed the Ram temple in Ayodhya, are now attempting to mislead the public by staging a drama regarding the alleged theft of donations. Mr. Rijiju said the House belongs to everyone and the main opposition party, Congress, is misusing the time allotted to them. The opposition members came to the well demanding a reply from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action against students. As the ruckus continued, the chairman adjourned the House till 12 noon. The National Democratic Alliance, NDA, parliamentary party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held at Parliament House today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, also attended the alliance meeting. The BJP today accused the Congress and other opposition of disrupting the proceedings of the monsoon session of Parliament. Briefing the media in New Delhi this morning, BJP National Spokesperson Sambit Patra claimed that the opposition had not participated in discussions on important bills which passed successfully in the houses for the benefit of citizens. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall today over parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim. The weather system is likely to impact several districts of Assam. More from our Guwahati correspondent.
4: The IMD has also issued a yellow warning for most districts of Nagaland bordering Assam, which could impact Saraideo, Sivasagar, Jorhat and Golaghat districts. The Assam

ஆங்கன். लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और आज है मंगलवार, सावन के महीने का जो प्रत्येक मंगलवार होता है वो जाना जाता है मंगला गौरी व्रत के लिए। और आज हमारी बहुत सी सखियां हैं जिन्होंने ये व्रत रखा होगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अलावा विज्ञान भी ये मानता है कि भाई उपवास जो है वो तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। तो इसी पर एक दोहा याद आता है मुझे, सुनिएगा, कि रूप राशि की प्रभा से मन नहीं होत पवित्र, जितना सुंदर चित्त हो उतना सुंदर चित्र। और इसी बात से संबंधित है हमारा आज का प्रश्न भी, क्योंकि हम हमेशा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न वो ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो मन शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने जवाब, अपने उपाय हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके उत्तरों की, आपके जवाब की प्रतीक्षा है। और फिलहाल तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो, जिसे गाया मुकेश और आशा भोसले जी ने। और देखिए, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि हम दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि जो अपनी ज़िंदगी दुनिया के नाम करता है, उसी का सारा जहां एहतराम करता है। तो आज है दिन विशेष में ख़ास बातें आपके लिए। तो आज है जयंती भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता, समाज सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में से एक, फिरोज शाह मेहता की। वे भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, प्रख्यात विधिवेत्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे, जिन्हें बॉम्बे का शेर नाम से जाना जाता है। आज उनकी जयंती पर हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज एक और महान गायक की जयंती है, जो हम सबके पसंदीदा है और जिनका नाम है किशोर कुमार। ये भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सदाबहार गीतों के लिए वे आज भी करोड़ों लोगों के प्रिय बने हुए हैं। फिल्म फेयर, जो कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिला उन्हें, पुरुष के उसमें जो पुरुषों वाला कैटेगरी होता है उसमें, तो 8 बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता था और ये भी एक रिकॉर्ड रहा। और क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, इसलिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने उनके सम्मान में किशोर कुमार पुरस्कार की स्थापना की। तो आइए हम भी उन्हें स्मरण करते हैं और उनके ही गाए हुए इस गीत को सुनते हैं, फिल्म बुढ़ा मिल गया से।

दोस्तों देखिए, हमारा एक प्रश्न था हमारे श्रोताओं से कि भाई जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं, तो चलिए मैं पहला ईमेल जो हमारे पास आया है बुशरा रेहान का, वो लिखती हैं कि गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड कल्पना। जैसा कि आज का प्रश्न है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे क्या होता है कि माइल्ड एंड फेवरेट म्यूजिक सुनना पसंद है। अच्छा, इन्हें गाने सुनना पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको हम अच्छे अच्छे गाने सुनवाएंगे अपने कार्यक्रम में। नवीन भाटिया जी हैं, वो लिखते हैं, ये तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमें नियमित इनके मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं। लिखते हैं कि पानी पी के एकांत में चले जाते हैं। नवीन कुमार जी और हैं, वो लिखते हैं कि मैं नवीन कुमार, मेरा मानना है कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ पल शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ और प्रतिक्रिया देने से पहले बहुत बार सोचता हूँ, इससे मेरा मन शांत होता है। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि कल्पना जी नमस्कार, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ देर शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दूँ, से जब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है तो बात भी नहीं बिगड़ती है। और चरण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि क्रोध में मनुष्य अपना ही नुकसान करता है, मैं तो रेडियो सुनता हूँ और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बाद में पछतावा कर लेता हूँ। प्रेमलता सोनी है हमारे साथ, वो लिख रही हैं कि हम एक गिलास पानी पीते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं जहाँ हमें सुकून मिलता है। क्या बात कही है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं अफरोज शेख, वो बिहार से लिखते हैं, मुझे गुस्सा आता है तो मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही स्मिता पांडे हमें लिखती हैं कि शानदार जानदार प्रोग्राम और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमें ये भी लिखना है कि भाई आपको गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे शांत करती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ईमेल आया है, नाम है अस्मिता, वो लिखती हैं कि मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ और थोड़ी देर चुप रहती हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि बुशरा रेहान जी ने लिखा था कि भाई उनको मन जब शांत करना होता है तो वो गाना सुनती है, तो ये वाला जो गीत है ना, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए, ताकि उनका मन शांत हो जाए।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, बहुत प्यारा सा गीत, कि भई यूं ही तुम मुझसे बात करती हो सच्चा झूठा फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कई बार हमारी मुलाकात हो जाती है कांवड़ियों से, क्योंकि वो गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तो मुझे बस दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि गंगा जल की कांवड़ हाथों में भोले का नाम जपते हैं, राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो कांवड़िए हर हाल में हंसते हैं। और सावन का जो महीना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हम सभी करते हैं, और उनमें से कांवड़ यात्रा है। तो सावन की ऐसी कई कांवड़ यात्राएं चर्चा में हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस कांवड़ यात्रा ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, वो है महिला कांवड़ यात्रा। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाएँ समूह बनाकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं और नारी शक्ति का संदेश भी दे रही हैं। इसके साथ ही कई दिव्यांग श्रद्धालुओं ने व्हील चेयर, बैसाखियों या फिर कृत्रिम अंगों के सहारे यात्रा पूरी कर ये संदेश दिया कि भाई दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य

कठिन नहीं होता। इसके साथ हम बात करें तो पर्यावरण मित्र कांवड़ यात्रा को हम कैसे भूल सकते हैं। अनेक कांवड़ियों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने, कपड़े के थैले अपनाने और यात्रा मार्ग पर पौधरोपण व स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही हमारे जो कुछ कांवड़िए हैं उन्होंने बताया क्या किया है, उन्होंने रक्तदान और सेवा कांवड़ यात्राएं भी करनी शुरू की हैं, जहां पर कई शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा के दौरान रक्तदान शिविर, निःशुल्क जल सेवा, चिकित्सा सहायता और भंडारों का भी आयोजन कर सेवा को ही शिव भक्ति बताया है। इसके साथ ही कुछ युवा जो हैं वो युवा जागरूकता कांवड़ यात्राएं भी कर रहे हैं, जहां कांवड़ यात्राओं में बहुत से सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, बेटी शिक्षा और जल संरक्षण जैसे सामाजिक संदेशों वाली झांकियां विशेष आकर्षण बन रही हैं। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो भाई जो सावन की कांवड़ यात्रा है ना, वो केवल जल अर्पित करने की परंपरा नहीं है, बल्कि सेवा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और अटूट आस्था का भी एक प्रेरक उत्सव बनती जा रही है। साथ ही मन में ये आत्मविश्वास भी भरती है हमारे कि भाई अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हर काम आसान है।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत अभी जो आप सुन रहे थे तुम साथ हो जब अपने कालिया फिल्म से, और जिसे गाया किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ बच्चों की बचपन की। तो मुझे एक शेर याद आता है कि उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो मेरे कहने से आपको करना क्या है, ज़रा अपनी आँखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो बचपन जब आसमान में काले बादल छाते ही दिल खुशी से उछल पड़ता था, किताबें एक तरफ और कागज़ की नाव दूसरी तरफ। बारिश शुरू होते ही न छाते की चिंता होती थी न कपड़ों की, बस दोस्तों की टोली, गलियों में चप चप, पेड़ों से टपकती बूंदें और मिट्टी की सौंधी महक, यही तो बारिश का असली जश्न होता था हमारे बचपन का। फिर घर लौटते ही जब हमें माँ की हल्की सी डांट पड़ती थी कि देखो पूरे भीग गए, और उसी डांट के साथ हमें गर्मा गर्म पकौड़े या भुट्टा, मानो बारिश का स्वाद वहीं पूरा हो जाता था। बारिश तो दोस्तों आज भी होती है, लेकिन नज़ारे कुछ बदल से गए हैं। कागज़ की नावों की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है, दोस्तों की आवाज़ की जगह नोटिफिकेशंस की टन टन सुनाई देती है। बारिश बाहर बरसती है, लेकिन कई बार हम उसे खिड़की के शीशे के उस पार से ही देखते रह जाते हैं, खिड़की खोलना भी भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार बारिश के साथ अपने बचपन को भी थोड़ी देर के लिए वापस बुलाया जाए। बच्चों के साथ एक नाव बनाइए, कुछ बूंदों को हथेली पर गिरने दीजिए, भीगी मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए और कुछ यादें फिर से जी लीजिए। क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ना, वो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बारिश ये यादों के बंद दरवाजे भी खोल देती है।

श्रोताओं, अभी आप खूबसूरत सा जो गीत सुन रहे थे वो सुन रहे थे एक फूल दो माली फिल्म से, और जिसे गाया था आशा भोसले जी से, वो आशा भोसले जी ने गाया था ये, उनकी मधुर आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। और अब हम बढ़ेंगे आगे अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने अपने श्रोताओं से जो एक प्रश्न पूछा था कि भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा जो है गुस्सा कैसे शांत करते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारे अपने उपाय लिख के भेजे हैं, तो उनमें से कुछ ईमेल्स मैं पढ़ देती हूँ। हमारे पास वैभव सिंह जी का ईमेल आया है प्रयागराज यूपी से, वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर भी गुस्सा शांत हो जाएगा, पर मुझे जब गुस्सा आता है मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ और मेरी माँ की आवाज़ सुनकर मेरा सब गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही हमें महेश अग्रवाल जी भी ईमेल करते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं पानी पीता हूँ और गाने सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। स्मिता पांडे जी का मुझे ईमेल मिला है, वो लिखती हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं जो प्रवचन होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, उनको सुनती रहती हूँ तो मेरा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का ईमेल आया है, जो हमें रोज़ाना ईमेल करते हैं, और वो लिखते हैं कि कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको, और मुझे किसी बात पर अगर गुस्सा आता है तो फिर मैं उस दिन बात नहीं करता, दूसरे दिन खुद ही माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर सब कुछ सही हो जाता है। ऐसे ही एक ईमेल आया है हमें बबली सिंह का, वो लिखती हैं कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं फ़ोन को साइलेंट करके म्यूज़िक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सुनते हुए सो जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ तब तक मेरा जो मूड होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ईमेल करते रहें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और तब तक आप ये सुनिए खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म से, और जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। तो चलिए अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं खादी की, जो भारत की स्वदेशी परंपरा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में खादी को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि खादी आज केवल वस्त्र नहीं बल्कि देश के कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। इसके साथ ही पिछले वर्षों में खादी की जो बिक्री है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लाखों बुनकरों और ग्रामीण परिवारों की जो आय है वो भी बढ़ी है। उन्होंने गुजरात के कच्छ के कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वे पारंपरिक हस्तकला को आधुनिक बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से बात करी और कहा कि वोकल फॉर लोकल का संकल्प अपनाएं और खादी व स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता दें, और यही कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति देता है। तो आइए हम भी बढ़ाते हैं एक कदम स्वदेशी की तरफ और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते हैं। फिलहाल इस प्यारी सी जानकारी, इस अच्छी सी जानकारी और इस ज़रूरी जानकारी के बाद मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारा सा गीत नौकर फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले।

नौकर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में बातें करने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही पीएम यशस्वी योजना की। पीएम यशस्वी का पूरा नाम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया है। ये योजना ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी, एनटी और एसएनटी वर्ग के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इससे जुड़ने के लिए आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी के माध्यम से किया जाता है। पोर्टल पर पंजीकरण कर पीएमवाईएसएएसवीआई यानी पीएम

दसवीं योजना का चयन करें, आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें, और सत्यापन के बाद जो पात्र विद्यार्थी होंगे, जिनकी पात्रता होगी, जो योग्य होंगे, उनको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। याद रखें, ये जो योजना है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवा सक्षम होंगे तभी तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो आइए, इन्हीं भावों से भरा हुआ एक गीत सुनते हैं, आन मिलो सजना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, देखिए हमारे अन्य दोस्तों ने भी हमें ईमेल किया है, जिसमें से एक हैं प्रद्युम्न वर्मा। वो लिखते हैं कि मुझे जिस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, मैं उस व्यक्ति के लिए अपने दिल की जो छिपी हुई बात है उसको पेपर पे लिख लेता हूँ और फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपूर्व पांडे हमें लिखते हैं श्रीनगर से कि मुझे गीत सुनवा दीजिए, तुम मुझे यूँ बुला ना पाओगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे FM गोल्ड पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिन पे आप जो है अपनी फरमाइश का गीत सुन सकते हैं, लेकिन ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ पर तो जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं आपको उसका उत्तर देना होता है। तो आइए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे बात करते हैं थोड़ी घूमने की, कि अगर इस मानसून आपका मन कुछ नया देखने, खरीदने और भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगने का है, तो आपके लिए लगा हुआ है दस्तकार मानसून मेला 2026। ये मेला 6 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक नोएडा हार्ट में आयोजित किया जा रहा है। मेले का समय है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपनी हस्त निर्मित कलाकृतियाँ लेकर आए हैं। यहाँ आपको हाथ से बुने वस्त्र, पारंपरिक आभूषण, मिट्टी, लकड़ी और बाँस से बनी सुंदर वस्तुएँ, घर की सजावट का सामान, लोक चित्रकला और अनेक राज्यों के जो स्वादिष्ट पकवान है ना, वो भी आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये केवल खरीदारी का मेला नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध कला संस्कृति और कारीगरों के अद्भुत हुनर को करीब से देखने का मौका भी है। तो इस मानसून अपने परिवार और दोस्तों के साथ दस्तकार मानसून मेले का आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि हर हस्त निर्मित वस्तु सिर्फ एक उत्पाद नहीं होती, बल्कि किसी कारीगरों के सपनों, मेहनत और हुनर की कहानी भी कहती है।

श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे हैं चोर मचाए शोर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को अनुमति दीजिए घर आंगन कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के आज के सफर की साथी हूं मैं, यानी मनीषा बोस। तो मेरे सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिल्मी सफर के उस दौर में लिए चलूंगी जब फिल्में रिलीज के समय शोर नहीं मचाती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ अपने गीत, अपने किरदार और अपनी कहानी में छिपे संदेश से हमेशा के लिए दिलों में बस जाया करती थीं।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 1958 से 1960 का जो काल रहा वो भारतीय फिल्मों के स्वर्ण युग का समय था, जब परिपक्वता के साथ सामाजिक यथार्थ, तकनीकी भव्यता और बेहतरीन संगीत इस काल की फिल्मों की पहचान

घर्षण भावनाओं का, गलतफहमियों का और याददाश्त चले जाने से जिंदगी में आई चुनौतियों से जूझते हुए फिल्म की कहानी त्याग समर्पण के मर्म को उभारती है। तो आइए आज अमर रोशनी का आगाज करते हैं फिल्म अमरदीप के इस गीत से।

0: देख हमें आवाज न देना। हमने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से साथियों आवाज तो दी है, और ये खूबसूरत सा गीत अमरदीप फिल्म जो 1958 में आए उसका एक बेहद ही सदाबहार युगल गीत रहा, जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया। राजेंद्र कृष्ण ने इसके गीत लिखे थे और संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। इस खूबसूरत गीत को आज भी जब हमारे श्रोता साथी सुनते हैं तो उनका दिल झूमने पर मजबूर हो जाता है। और आज की हमारी ये खूबसूरत फिल्म जो है आकाश अमरदीप, इसकी जानकारी हम आपको देंगे अपने एक ही फिल्म से के कार्यक्रम में, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं ये संदेश।
1: Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर और आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है आज का एक ही फिल्म से, और आपके साथी हूँ मैं मनीषा। तो आप हमें

कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल ना भूलिए। और ये बताने के लिए जो रास्ता है आपके पास वो है हमारा मेल indraprasthdelhi@gmail.com iprradiodelhi@gmail.com। आपको इस पर हमें बताना है अपने संदेश भेज करके आपको क्या जानकारी और चाहिए इस फिल्म से जुड़ी हुई, और फिल्म के ये गीत आपको कैसे लग रहे हैं जो आज के कार्यक्रम में शुमार है। शिवा जो शिवाजी प्रोडक्शन की शुरुआती हिंदी प्रस्तुति थी उसमें से एक ये फिल्म रही। फिल्म के छायांकन की जिम्मेदारी संभाली थी प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर ए विंसेंट ने, और कहानी में याददाश्त खो जाने के यानी स्मृति लोप के विषय को दर्शाना उस दौर की जो लोकप्रिय और संवेदनशील पटकथा का एक अंदाज था, जो शैली थी उसी का ही एक रूप था। तो चलिए हम सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा जो आपको जरूर पसंद होगा, याद दिलाते हैं उस दौर की आपको।

निश्चित रूप से अमरदीप का ये खूबसूरत सा गीत हमारे बहुत सारे सुनने वाले श्रोता साथियों को पसंद है और हमारे बहुत सारे सुनने वाले लिसनर्स जो हैं उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश देवांगन जी, उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे एक श्रोता साथी जिन्होंने लिखा है कि एक फिल्म की जो कहानी है और उसके जो गीत हम सुनते हैं तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की फिल्मों से हमें वो आनंद नहीं मिल पाता है। और ये लिखने वाले हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। और एक ही फिल्म सुनने वाले

0: हमारे अगले श्रोता साथी हैं इस कार्यक्रम को और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, अमरदीप की जानकारी अच्छी लग रही है। और ये श्रोता साथी हैं हमारे दिग्दर्शन गौर मेरठ कैंट से, और इनके साथ हैं कविता गौर। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र छिपा, इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ये जानकारी भी अच्छी लग रही है। और 1958 की फिल्म का वो दौर इन्हें याद आ गया है और बोलते हैं कि इसमें जुड़े हुए जो किस्से, कहानियाँ और नगमे हैं, ये इस कार्यक्रम के द्वारा ही हम बेहतर तरीके से आनंद उठा पाते हैं, वरना आजकल पुराने गीत कहाँ सुनाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने सच कहा कि पुराने गीतों के लिए, इसलिए हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम और ऐसे गीतों की माला लेकर आते हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोमदत्त हैं ये हैं पटियाला पंजाब से, इनके साथ हैं ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, बहुत शुक्रिया। और कमलकांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए। और चूंकि हम आज की फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं, अमरदीप, और ये फिल्म 1958 में आई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे देवानंद, अशोक के रूप में वैजयंती माला थी जो अरुणा के किरदार में थी, पद्मिनी थी रूपा के किरदार में, और प्राण प्रमुख भूमिकाओं में दिखे, जिसकी कहानी एक संपन्न घराने की युवती अरुणा से शुरू होती है और वो अपने गुस्सैल और अंकुश में कसने वाले मंगेतर यानी कि प्राण से बचने के लिए अपना घर छोड़ देती हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अशोक नाम के युवक से, जिससे आगे चलकर अरुणा को प्रेम हो जाता है, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से अशोक की याददाश्त चली जाती है और फिर यहीं से कहानी भावनाओं और संघर्षों के सैलाब के साथ आगे बढ़ती है। तो चलिए हम सुनते हैं फिल्म का अगला गीत।
1: से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ये ऐसी चीज है भाई। लेने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो

0: यार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो पैसे का यार नहीं।
1: अभिनेता देव आनंद अपने सहज, संवेदनशील और आकर्षक अभिनय के साथ अशोक के किरदार में इस फिल्म में भावनात्मक ताना बाना बुनते हुए नजर आते हैं। वहीं अभिनेत्री वैजयंती माला अरुणा के रूप में अपने आत्मसम्मान का परिचय देती हैं और प्रेम की दृढ़ता का सुंदर रूप अपने अभिनय में साकार करती हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना अभिनेत्री पद्मिनी रूपा के किरदार में सादगी और करुणा का रूप बनकर आती हैं, जबकि प्राण अपनी दमदार भूमिका में कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही दोस्तों संगीतकार सी रामचंद्र का संगीत और राजेंद्र कृष्ण के बोल। भले ही ये फिल्म मुख्य धारा की चर्चाओं में कम रही, लेकिन फिल्म का संगीत संगीत प्रेमियों को आज भी रिझाता है। अगर अमरदीप के गीतों की सूची बनाई जाए तो उसके गीत के बोल आज भी उतने ही ताजा महसूस होते हैं। फिल्म का हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता हुआ बढ़ता जाता है। यही उस दौर के संगीत की सबसे बड़ी खूबी रही।

सच्चे दोस्तों की जीवन की असल रोशनी धन से नहीं अपने पन से आती है, इसीलिए फिल्म अमर दीप ऐसा दीप जलाती है जो दिलों में सदा के लिए अमर हो। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि हिंदी सिनेमा की गरिमा, मधुर संगीत, उत्कृष्ट अभिनय और भावनात्मक कहानी का आनंद लेना है तो अमर दीप जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म तेज घटनाक्रम से नहीं बल्कि अपने पात्रों, अपने संवाद, अपनी कहानी और अपने गीत संगीत से दर्शकों के मन में जगह बनाती है। भले ही अपने दौर की बड़ी व्यावसायिक फिल्मों में ये शामिल नहीं थी, लेकिन फिल्म की कलात्मकता और संगीत इसे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की ओर ले जाते हैं और ये फिल्म यादगार कृतियों में शुमार होती है।

आशा करते हैं एक ही फिल्म से के इस सफर को आपने भी जिया होगा। आज फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा के एक और सुनहरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए एक ही फिल्म से के इस कार्यक्रम से मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: के मकर द्वार पर एहतजाज करके अपोजिशन हिंदुओं और हिंदू सनतों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है।
1: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि झारखंड में हजारों तलबा एहतजाज कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनकी हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिससे जाहिर हो जाता है कि वो पेपर लीक जैसे मामलों में अलग अलग मौकिफ अख्तियार कर रही है। कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है, आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दाखिला राजनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉ जयशंकर और दिगर रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, क्योंकि महानदी और दिगर बड़े दरियाओं का पानी मुसलसल कम हो रहा है। इसके बावजूद सैलाब से शदीद तौर पर मुतासरा गांव में हजारों अफराद अब भी पानी भर जाने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आइंदा दो दिन के दौरान मजीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब के बाद की सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है, क्योंकि पीर की रात से महानदी दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे जगतसिंहपुर जिले की कई गांवों को जजवी राहत मिली है। ताहम नशीबी इलाकों से पानी मुकम्मल तौर पर ना निकलने के बायस बहुत से कुनबे अब भी बेघर हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत के 7 जिलों में शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है और आइंदा 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के पेशगोई की है। मयूरभंज जिले में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को उनके एक मुतनाज़े बयान पर पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई कल DMK की किसानों की एहतजाजी रैली में कावेरी आबी तनाजों पर उनकी तकरीर के बाद की गई है। ये मामला थंजौर की एक खातून की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें खातून ने इल्जाम लगाया कि उनकी तकरीर में खवातीन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती हुई बदअमनी के दौरान मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाग जिले में निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने यह दावा एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमीनी सतह के मनाजिर की वीडियो जारी करते हुए किया। कमेटी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुजफ्फराबाद जिले के मकरी इलाके में शहरियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। आबनाए हुरमुज में एक तजारती जहाज पर फिर से हमले और बहरे अहमर में एक तेल टैंकर का रास्ता बदले जाने के बाद दुनिया में तवनाई की सप्लाई पर फिर खतरात मंडलाने लगा है। एक बार बरदार जहाज को आबनाए हुरमुज से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। बरतानिया के बहरी तजारत से मुतालिक इदारे के मुताबिक इस जहाज को ओमान में अल खसाब के लगभग 20 बहरी मील शिमाल मशरिक में निशाना बनाया गया और उसने एक हंगामी पैगाम भेजा। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो को मनगढ़ंत करार दिया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पुराने सिक्कों की नुमाइश के दौरान सरकार के बाख्तर खरीदारों की तौसीक करते हुए दिखाया गया है। बैडमिंटन में भारत के तुषार सुवीर आज कोरिया मास्टर 2026 से बाहर हो गए। वो क्वालिफाइंग मैच में जापान के शोगो ओगावा से हार गए। BWF सुपर 300 टूर्नामेंट आज जनूबी कोरिया के शहर आसान में शुरू हुआ, जो इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। खवातीन के डबल्स में प्रिया कोंजेन गम और श्रुति मिश्रा, जबकि मर्दों के डबल्स में कृष्ण प्रसाद गर्ग और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय आज अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। اپوزیشن ممبروں کی طرف سے مختلف معاملات پر دونوں ایوانوں میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں تعطل جاری ہے۔

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में

0: प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना पीएलआई एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले एमएसएमई की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
2: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
3: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
4: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं।

0: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और 12 सेकंड और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है। हाँ, जी हाँ, एक ही कलाकार प्रोग्राम का। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
4: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हम उस महान कलाकार को जिनकी आवाज आज भी हर दिल की धड़कन में बसती है, जिनकी हंसी में शरारत थी, जिनकी उदासी में गहराई थी और जिनकी गायकी में भावनाओं का अथाह समंदर था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अमर गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और बेमिसाल मनोरंजनकर्ता किशोर कुमार, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जी, 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ढेर सारी बातें होंगी और इन्हीं के गीत खूबसूरत से आप तक पहुंचाऊंगी, और आप भी सफर में हमेशा की तरह हमारे हम सफर बन सकते हैं मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो बस बन जाइए इस खूबसूरत से सफर में हमारे हम सफर।

जी हाँ, आज भी हम उतना ही प्यार करते हैं इस खूबसूरत सी आवाज को जो उस दौर में करते थे। आभास कुमार गांगुली जी, यही नाम था किशोर कुमार का, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। अशोक कुमार और अनूप कुमार पहले से ही फिल्मों में थे, ये दोनों इनके भाई हैं, लेकिन किशोर दा ने अपनी अलग जगह बनाई और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। कहते हैं कि किशोर कुमार ने कभी औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा ली ही नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ में जो जादू था वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है, जो महसूस कर रहे होंगे आप इन गीतों को सुनकर। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इनकी आवाज़ में।

फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसमें ये तीनों भाई नजर आए थे। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वे पूरे के पूरे मनोरंजन का नाम थे। रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी शरारतें और उनके जो अनोखे अंदाज के जो किस्से हैं, वो आज भी मशहूर हैं।

तभी योडलिंग, कभी हंसी, कभी दर्द, हर रंग उनकी आवाज में सुनाई देता है। 1969 में एक फिल्म आई थी, नाम था आराधना। उनकी गायकी इस फिल्म से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस फिल्म के गीत आपको याद होंगे, रूप तेरा मस्ताना, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिलहाल तो हम आपको ये वाला गीत सुनवाते हैं, उसके बाद इसी गीत से जुड़ा एक किस्सा भी आपसे शेयर करेंगे। सुनिए इस खूबसूरत से गीत को।

किशोर दा का गाया ये गाना, जो कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था, ये गाना 3.5 मिनट का था। और आपको बता दूं कि ये सिंगल शॉट में शूट किया गया था। स्टार्स को सिर्फ ये समझाया गया था कि उनको क्या करना है, ना उनको वक्त दिया गया रिहर्सल करने का और ना ही इस गाने के ज़्यादा टेक हुए। गाना शूट किया और उसके बाद इस गाने ने धमाल मचा दिया। शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म आराधना में किशोर साहब ने सिर्फ 3 गाने, कुल 3 ऐसे गाने गाए थे, जिसमें था एक सपनों की रानी, कोरा कागज था, ये मन मेरा, और तीसरा था रूप तेरा मस्ताना। ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि किशोर दा को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और यहीं से उनके स्टारडम की भी शुरुआत हुई।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक अनेक सितारों की आवाज बनकर दर्शकों का दिल जीता। हर अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुसार वे अपनी गायकी का रंग बदल देते थे।

0: फिल्म मंजिल से अभी आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे हैं। अगर खुशी का गीत हो तो किशोरदा, अगर प्यार का इजहार हो तो किशोरदा, और अगर दिल टूटने की कहानी हो तब भी किशोर कुमार। किशोर कुमार को प्रकृति और अपने जन्म स्थान खंडवा से बहुत लगाव था। वे अक्सर कहा करते थे कि एक दिन वे वापस खंडवा जाकर सुकून की जिंदगी बिताएंगे। 70 और 80 का दशक किशोर कुमार के नाम रहा। लगभग हर बड़े संगीतकार ने उनकी आवाज का भरपूर उपयोग किया और उन्होंने हजारों गीतों को अमर बना दिया। किशोर कुमार जितने मस्तमौला थे उतने ही संवेदनशील भी थे। यही कारण है कि उनके दर्द भरे गीत आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अगला गीत हमने लिया है वो गीत है जिसने भी धमाल मचाया था फिल्म डॉन से, तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते थे, सुनिए।
1: हर भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबा। आहा,

0: का ताला।
1: आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं। दादा बाबू रोड गिरीहिट झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजन साइमा जी परिवार के साथ हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु निरंजन, सौम्या हमारे साथ हैं। गुरनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोरा, ममता कीर्ति जी पदमपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ हैं। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद पराग पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल जी हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं। चिरमिरी कुलासिया कालड़ी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ जी हमारे साथ हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से जुड़े हुए

हमारे साथ और ये संदेश है हमारे पास कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा से अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा जी का है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शेनवाज सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमीला जी हमारे साथ हैं। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी और नंदा बोखड़े जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश जो है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार जी जुड़े हुए हैं और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं। दिल मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ हैं। खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज और आयुषी जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम अशफाक और अफरीन जी का आया हुआ है और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे सफ़र में हम सफ़र बने हैं। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम कुछ देर में शामिल करेंगे। फिलहाल आपसे हम चलते चलते यही कहेंगे कि आवाज़ें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं लेकिन कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए अमर भी हो जाती हैं। किशोर कुमार उन्हीं अमर स्वरों में से एक हैं। उनकी गायकी ने हमें हंसाया रुलाया प्यार करना सिखाया और ज़िंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी दिया। तो अब इन्हीं के साथ कहने के लिए तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं किशोरदा के जो मेरा मन कर रहा है आप तक पहुँचाऊँ लेकिन वक्त की पाबंदी है। फिलहाल एक और मैंने खूबसूरत सा गीत चुना है किशोरदा की आवाज़ में। उस गीत को सुनिएगा और उसके बाद फिर किसी मोड़ पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और हाँ आपसे बता दूं कि आप 3 बजे का जो प्रोग्राम है उसको सुनना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हम आपके लिए ऐसे गाने चुन चुन के लेकर आते हैं जो अमर थे अमर हैं और अमर रहेंगे। तो फिर आपसे मैं अनुमति लेती हूँ इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप जानते हैं कि ये समय होता है प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज का। जी हाँ, 1950 और 60 के दशक के उस दौर के गीत हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं आपके लिए, जो हमेशा हिट थे, हैं और रहेंगे। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। तो आपको लिए चलते हैं फिर से उसी दौर में, बॉलीवुड का एक वो दौर जहाँ एक तरफ सीधी सादी और शर्मीली हीरोइन का राज था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी अदाकाराएं भी थीं जिनकी एक चालाक मुस्कान और कातिलाना अदाएं पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती थी। जी हाँ, हम बात करेंगे उस दौर की कुछ ऐसी फीमेल विलेंस की और बेम्स की, जिन्होंने पर्दे पर अपनी खलनायकी का ऐसा जादू चलाया कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

तो सबसे पहले हमने जिनको चुना है वो है 50 के दशक में नादिरा जी। पर्दे पर एक ऐसी मॉडर्न मगर चालाक औरत की छवि जो अपनी एक सिगरेट की फूंक से बड़े बड़े शूरवोरों को नचा सकती थी। 1955 की राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 में उनका किरदार माया का था जो कि बेम थी। आज भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे आइकॉनिक खलनायिकाओं में इनको गिना जाता है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, इन पर पिक्चराइज ये सुपरहिट सॉन्ग।

और अब जो हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, आप पहचानिए कि ये गीत किसके ऊपर पिक्चराइज किया गया था। हम जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी अदाकारा थी कि कई सारी फिल्में ऐसी थी जो इनके बिना अधूरी सी फील होती हैं। लगता है कि अगर ये नहीं होती या इनके ऊपर अगर कोई गाना नहीं पिक्चराइज किया गया होता तो इस फिल्म में मजा कैसे आता। तो सुनिए इस गीत को और अपने संदेश के जरिए बताइए कि ये गीत किस खलनायिका के ऊपर, खलनायिका भी कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी एक साइड हीरोइन भी कह सकते हैं, जल्दी से बताइएगा।

1966 की ब्लॉकबस्टर फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत आप सुन रहे थे, जो कि हेलन पर फिल्माया गया था। और आज जब भी ये गीत बजता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ, हेलन जी के कैमरे डांस और उनकी कातिल अदाओं से ब्लेन के किरदार में ऐसा उन्होंने ग्लैमर भरा जो हर फिल्म की जान बन गई। 60 के दशक में अगर ब्लेन के

मिलवाते हैं एक बहुत ही खतरनाक सांस से। अंदाज शायद आप लगा चुके होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। 1950 और 60 के दशक में क्रूर सास, चालाक मौसी या सौतेली माँ का किरदार अगर किसी ने अमर किया तो वो थी ललिता पवार। 1959 की फिल्म अनाड़ी में उनका श्रीमती डिसूजा का किरदार हो या फिर बाद की फिल्मों में कड़क सास का रूप हो, उनकी एक उठी हुई भौं ही काफी थी माहौल में तनाव पैदा करने के लिए। तो हमने चुना है इनकी फिल्म परवरिश से, इनके ऊपर फिल्म आई।

ललिता पवार, 1959 की फिल्म अनाड़ी में उनका श्रीमती डिसूजा का किरदार हो या फिर बाद की फिल्मों में कड़क सास का रूप हो, उनकी एक उठी हुई भौं ही काफी थी माहौल में तनाव पैदा करने के लिए। तो हमने चुना है इनकी फिल्म परवरिश से, इनके ऊपर फिल्माया ये खूबसूरत सा गीत।

है मोती लागे सूरत प्यारी ओ, ओ, ओ आज खिले हैं फूल खुशी के गोद भरी है हमारी गोद भरी

जलन को दुखड़े पास नाए, ओ चांद और सूरज से बढ़कर ये।

this here.

जी हाँ साथियों, 50 और 60 के दशक में खलनायकी का सिर्फ एक रूप नहीं था। एक तरफ जहाँ ललिता पवार की जैसी जो अभिनेत्रियाँ थीं वो पारिवारिक साजिशों की मलिका थीं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे पर राज करती थीं ग्लैमरस बेम्स। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हेलन का और उसके बाद शशिकला का। शशिकला की बात करें तो 1962 की फिल्म आरती हो या फिर 1963 की गुमराह, उन्होंने अपनी चालाकी भरा किरदार इतने शानदार ढंग से निभाया कि दर्शक उनसे नफरत भी करते थे और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी। वहीं उनकी जब अदाकारी पर्दे पर आती थी तो एक डर भी दिल में समा जाता था। सुनते हैं उन्हीं पर पिक्चराई से खूबसूरत सा गीत।

गिरत दुनिया सोती हो और तारों भरे खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो, क्या

और अब हम आपको मिलवा रहे हैं चुलबुली, लेकिन खतरनाक। जी हाँ, अरुणा ईरानी, इनकी खासियत ये थी कि वे अपने चुलबुले और हसमुख अंदाज से कभी पीछे चालाकी भरा चेहरा छिपा लेती थी, जिससे उनका जो नेगेटिव रोल था वो भी एक अलग ही लगता था। और उसके ऊपर उनका डांस, फिल्मकार वाले लीजिए बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से मुख्य हीरोइन जो थी उसको भी टक्कर दी है। हमने चुना है उन्हीं के फिल्म में, उनके ऊपर फिल्माया फिल्म अनोखी रात से ये खूबसूरत सा गीत।

और अब इन सबके बीच में बात करते हैं बिंदु की। मोनिका और शबनम की पहचान अगर है तो नाम आ जाता है बिंदु का, जिनकी तीखी नजरें, सिगरेट पीने का अंदाज और डायलॉग डिलीवरी पर्दे पर ऐसा खौफ पैदा करती थी कि दर्शक उनके किरदार से

नफरत करने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने सिर्फ डिस्को या ब्लेंड के अड्डे तक सीमित न रहकर फिल्म दो रास्ते जैसी फिल्मों में चालाक और घर तोड़ने वाली बहू के किरदार को भी निभाया है। सुनते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज एक गीत।

बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्किन बीना, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित जी हमारे साथ हैं, सनावद से शेख मूसा मोहसिन जी हमारे साथ हैं और अजीत भापसर जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैद अब्बासी जी चौक ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हैं, डीवी राणा जी नेहरू बयार दिल्ली से हैं, सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं, देवशंकर तामुरिया जी कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं और इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। उसके बाद अगला जो संदेश है वो अजीत भापसर जी का ही हम तक पहुँचा है और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपको बता दें कि आप आज शाम 4:15 पर सुनेंगे युवाओं का प्रोग्राम युववाणी। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी हर रोज की तरह आप आनंद लेंगे शाम 5:30 पर। और उसके बाद लोक संगीत जो हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:10 पर। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके लिए हम हर रोज लेकर आते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है 3:30। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उन हुए। जो हर साल 20 सफर को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 4 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वफादार रुफाका की बेमिसाल कुर्बानी, इस्तेकामत और हक पसंदी को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। सामिन, सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहले खाना और जानिसार साथियों के साथ जुल्म, जबर और नाइंसाफी के सामने सर झुकाने के बजाय हक, इंसाफ और इंसानी वक़ार की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की। ये मारिका इख्तदार के हुसूल के लिए नहीं बल्कि उसूलों, अखलाकी अकदार और दीन इस्लाम की हकीकी रूह के तहफ्फुज़ के लिए था। इसीलिए करबला का पैगाम किसी एक जमाने या एक कौम तक महदूद नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सर चश्मा है। चहलुम हमें ये एहसास दिलाता है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग उसूलों पर साबित कदम रहते हैं तारीख उन्हीं को इज्जत और दवाम अता करती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सब्र, इस्तेकामत, ईसार, बर्दाश्त और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। उनकी कुर्बानी ने यह हकीकत हमेशा के लिए वाज़े कर दी कि हक की हिफाजत के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो वो सौदा खसारे का नहीं बल्कि कामयाबी का है। सामीन, चहलुम का दिन हमें अपने किरदार का जायजा लेने की दावत देता है। क्या हम इंसाफ का साथ देते हैं? क्या हम कमजोरों के हुकूक का एहतराम करते हैं? क्या हम मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे को फरोग देते हैं? अगर हम इन सवालों पर गौर करें तो यही चहलुम का हकीकी पैगाम है। आइए इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए इस अहद की तजदीद करें कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई, दयानत, इंसाफ, सब्र, बर्दाश्त और इंसान दोस्ती को फरोग देंगे, क्योंकि यही वो अकदार हैं जो एक पुरअमन, बावकार और बाअखलाक मुआशरे की बुनियाद बनती हैं। अल्लाह ताला हमें वाकई करबला के अबद पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता

बदौलत वो आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं। जलसे की सदारत करते हुए डॉक्टर जी आर कंवल ने कहा कि हजरत अमीर खुसरो ने 8 बादशाहों का दौर देखा और अरबी, फारसी और तुर्की समेत मुतअद्दिद जबानों पर उबूर रखते थे। उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो आवाम और बच्चों दोनों के शायर थे और संस्कृत समेत हिंदुस्तान की तमाम जबानों से मोहब्बत रखते थे। आखिर में गालिब अकेडमी के सेक्रेटरी अकील अहमद ने तमाम मुकर्रीन, मेहमानों और शुराका का शुक्रिया अदा किया।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ देर में आप समाचार सुनेंगे।

印度德里广播电台。接下来请听一篇特写，题目是数学在印度仍然鼓舞人心。构成今日数学基础的许多概念

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和吉特拉辛格唱的歌曲。

0: 度德里广播电台听众朋友们，请收听加吉情歌唱的歌曲。
1: आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है ना समंदर निगल सका इसको ना तवारीख तोड़ पाई है वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

印度代理广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी युवा साथी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार
1: अमीषा, आज सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को एक खास रेडियो रिपोर्ट सुनवाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ऊपर और उसमें बताएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में, क्योंकि कई सारी ऐसी स्पर्धाएं इस बार खेलों में नहीं थी जिसमें हम बहुत अधिक पदक जीतते थे, जैसे कि शूटिंग, रेसलिंग, तीरंदाजी, ये इस बार नहीं थे, इसलिए पदकों की संख्या कम अवश्य है, लेकिन हमारे पैरा खिलाड़ियों ने और खास तौर से हमारे एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, वहीं हमारे जूडो के खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है वो एक काबिले तारीफ चीज है। तो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं हमारी खास रेडियो रिपोर्ट।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स

स्कॉटलैंड में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जांबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब

0: नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्विन शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो, जहां भी हो, भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खासतौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड प्रदीप भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: प्रदीप, शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल अगर आप टोटल मेडल से देखें। जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इंप्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
1: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड है उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन 3 स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन 3 खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, खैर पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
1: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जैवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है और अब तो इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया है कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे, क्योंकि देखिए अब वो जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूं और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये 3 गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
0: जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया, जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस सैंटियागो जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों की साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूं, और जो महावीर जी भी एग्री

0: इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखे तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटा, नरेंद्र वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल ला ला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश, अंकुश वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया बॉक्सिंग के बाउट्स ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलड़ा बदल गया। और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ फोर्थ।
1: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि यह प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
2: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि फीमेल चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु है, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं, वेट लिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं। और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाऊं मैं, जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू आवर मेल कंपेटिटर्स।
1: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
0: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे रहे, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है, इट्स नॉट इन

0: होगा तो बीमारी भी कम लगती है। तो ऐसे मौसम में नियमित रूप से जो मुर्गी घर का जो फर्श है, जो बिछावन है, उस पर पूरी तरह से उसको साफ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, और उसमें जो उसके पंख हैं या बीट हैं या और कुछ गंदगी है उसकी समय समय पर सफाई करें, और इस जो वेस्ट मटेरियल है इसको मुर्गी घर से दूर गड्ढे में डालें, कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी घर के अगर आसपास डालेंगे तो ये उड़ के फिर दोबारा मुर्गी घर में आ सकता है और उसमें कई तरह के कीटाणु और उनके परजीवी कई तरह के मतलब उसमें लग सकते हैं। दूसरा ये है कि जो पानी है, पानी भी जो मुर्गियों को ताज़ा देना चाहिए, और देखिए कई बार पानी गंदा हो जाता है, मुर्गी उसमें चोंच मारती है, कुछ दाना डाल देती, तो समय समय पर जो पानी है उसको जो है बदलते रहना चाहिए ताकि मुर्गी को साफ सुथरा पानी मिले, कोई इस तरह की उसमें बीमारी नहीं आए। अब एक बात और मैं दाने की बताऊंगा, बरसात के मौसम में दाना उतनी ही मात्रा में डालें जितना मुर्गी खा ले, बर्तनों में ज़्यादा दाना छोड़ना नहीं चाहिए, उसको समय समय पर डालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डालते रहें, क्योंकि इसमें फफूंद लगने का भी डर रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में मैंने जैसे बताया कि उसमें नमी रहती है, तो जो उसका दाना है वो सूखी अवस्था में उसमें रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मुर्गी पालक है इस मौसम में उसको पूरा सावधानीपूर्वक अपनी सारी मुर्गियों पर निगाह रखनी चाहिए, कोई अगर मान लो मुर्गी सुस्त है या कोई मुर्गी मर गई है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दें और उसको मुर्गी फार्म से दूर ले जाके उसको दबा दें।
1: डॉक्टर साहब दाने की बात आपने करी है, दाना जो है वो जो अच्छी खुराक जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल है ना, तो वो क्या होना चाहिए, कितना मात्रा में क्या क्या चीज मिला के देनी चाहिए?
0: देखिए जो कहते हैं कि जी 60-70% जो खर्चा है मुर्गी पालन में
1: जी
0: वो इसके आहार पर ही आता, दाने पर ही आता है। तो दाने में सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो मुर्गी हम ब्रॉयलर हो मांस उत्पादन के लिए हो या जो है अंडा उत्पादन के लिए हो, तो दोनों ही प्रकार की मुर्गियों के लिए जो दाना है वो संतुलित होना चाहिए। और वो संतुलित दाना मतलब ये होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसमें खनिज तत्व, नमक, ये सारे तत्व उसमें होने चाहिए, क्योंकि खनिज तत्व में देखिए बहुत कैल्शियम है, फास्फोरस

0: है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, क्लोराइड बहुत सारे हैं जो मुर्गी में अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इनका संतुलित आहार होना चाहिए, और संतुलित आहार बनाने के लिए देखो उसमें मक्का का विशेष रूप से उसमें इस्तेमाल होता है।
1: जी
0: तो मक्का है, गेहूं है, और उसके अंदर खल है, और देखिए उसमें मछली का चूरा है, ब्लड मील है, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं। खनिज जो मिश्रण है वो 2% उसमें होना चाहिए, और नमक भी उसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुर्गी का दाना बनाया जाता है, और उनकी आवश्यकता अनुसार दाना दिया जाता है। जैसे जो ब्रॉयलर है उसको हम 42 दिन के लिए रखते हैं, तो उसमें दो तरह का राशन होता है, एक स्टार्टर होता है, एक फिनिशर होता है। परंतु जो मुर्गियां हमारे अंडा उत्पादन के लिए होती है उसमें दो तीन तरह का दाना उसमें होता है, मतलब स्टार्टर है और फिर ग्रोअर है, फिनिशर है। तो मतलब उनकी आवश्यकता अनुसार उसमें प्रोटीन की मात्रा उसमें घटाई बढ़ाई जाती है। तो मतलब ये है कि दाना संतुलित हो, साफ सुथरा पानी हो। तो अगर ये संतुलित दाना उनको मिलता रहेगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनका अंडा उत्पादन भी लेयर्स में अच्छा बना रहेगा।
1: अब डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आती होंगी मुर्गियों में, तो कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं और किस तरह से बचाएं?
0: देखिए जिस तरह से हमने प्रबंधन की बात की है कि अपने मुर्गी घर को हवादार रखें, उसमें जैसे कई बार अमोनिया गैस बन जाती है, पर्दों को हटाएं, और रात के समय भी मौसम के हिसाब से मतलब ये रखें। अगर बारिश आने का उसमें अगर खतरा है तो देखिए बोरी के जो पर्दे हैं उनकी जगह पे प्लास्टिक के जो पर्दे हैं उनको रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से शेड के अंदर पानी न जाए। तो अगर मॉइस्चर नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, तो बीमारी भी कम लगेंगी। और इसमें मुर्गियों में हमने देखा कि इसमें बहुत तरह की विषाणु और जीवाणु जनित और बहुत सारे परजीवी तरह की जो है इसमें रोग लगते हैं। तो मुर्गियों में देखिए अगर रोग हो जाता है तो उसका उपचार तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु इसका बचाव बहुत अच्छा है। और दोनों तरह की मुर्गी में कई प्रकार के टीके लगते हैं, उसमें जैसे रानीखेत का टीका है, और जो ब्रॉयलर है उसमें तो केवल दो तीन तरह के टीके लगते हैं, रानीखेत का है और जैसे उसके दो टीके लगते हैं। और जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गी हैं उसमें जैसे चेचक का है, और उसमें देखिए बर्ड फ्लू का हो जाता है कई बार, लीची का रोग है, मेरेक्स का है, मतलब ये कई तरह के जो वायरस से होने वाले ये रोग हैं ये उनमें होते हैं। तो इनका समय समय पर जो है ना टीकाकरण अगर करवा देते हैं आप, जैसे मैं अगर चेचक की बात करें तो 8 हफ्ते पर उसका लगा देते हैं। एवियन एंसेफलाइटिस की बीमारी होती है, उसका 90 दिन के ऊपर टीका लगता है। तो मतलब पशु चिकित्सक की सलाह से ये अपना समय पर टीका लगवा दें। दाने के अंदर कोक्सीडिया एक जो दस्त लगा देता है उसकी दवाई भी डाल के रखें, तो दाने में अगर कोक्सीडिया की दवाई देंगे तो उससे भी बच सकते हैं। कई बार इसमें परजीवी हो जाते हैं, बाह्य परजीवी, तो उनके लिए भी स्प्रे होता है, तो उनकी स्प्रे करें। तो इस तरह से अगर मान लो उनको बचाव के टीके देंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मुर्गियों को इस बरसात के रोग में बचा सकते हैं जो है।
1: डॉक्टर आर्यन शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे मुर्गी पालक भाई हैं वो इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी जानकारी दे रहे थे हमारे डॉक्टर रामनिवास वर्मा जी, जो पशु वैज्ञानिक हैं, और उनसे बातचीत कर रहे थे नरेश पराशर जी, जो हमारे सीनियर अनाउंसर हैं। बहुत सटीक सवालों का उन्होंने बौछार की, और हमारे डॉक्टर रामनिवास जी ने उनका सटीक उत्तर दिया। जो हमारे किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातों का जो हमारे डॉक्टर साहब ने अपने इस कार्यक्रम में बताया है उनका अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपना जो भी उससे उत्पादन, अंडा उत्पादन है या मांस उत्पादन है, तो उनसे सही ढंग से ले पाएंगे। छोटी सी बातें हैं, जैसे मैं कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं और प्रियंका भी सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों का अगर जिसमें जिसमें जो मुर्गी की बीट है, उनका पानी है, रख रखाव है, और सबसे बड़ी बात है कि भाई बारिशों के दिन है, उनका रख रखाव कैसे करना है, पानी उन तक ना पहुँचे जिससे जो परजीवी हैं वो उन तक ना पहुँचें, जिससे मुर्गी बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसमें टीकाकरण उन्होंने बताया कि रानीखेत का टीका है, जिसमें चेचक का टीका है, लीची का टीका है, वो लगवाएं तो मुर्गियों को उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। और उन्हें दाना दाने के लिए भी कहा कि ज़्यादा दाना ना डालें, ख़त्म होने पर ही दाने का दाना डालें, जितनी मुर्गियाँ खा सके उतना ही करें। और संतुलित आहार की उन्होंने बात करी अपने इस बातचीत में। तो अगर इन हम छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम मुर्गी पालन में ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे किसान बहन भाइयों को अधिक से अधिक लाभ होगा, और बातें और भी होती रहेंगी। तो और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था रामायण का। इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सिद्धार्थ
4: और पूजा का प्यार भरा नमस्कार। सिद्धार्थ, किसान वाणी में हम अपने श्रोताओं को खेती से संबंधित जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
3: जी हाँ पूजा, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और जिनसे हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह करें। और पूजा, हम अपने किसान भाई बहनों से ये भी साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव। पूजा, भारत सरकार किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है और

0: किसान वाणी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो किसान भाई बहनों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पूजा, कई बार ऐसा होता था कि फसल जब खराब हो जाती है किसान की, तो उसको बहुत घाटा होता था। तो ऐसे में ये योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है।
1: जी श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है तो पात्र किसान भाई बहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का दावा दिया जाता है।
0: और पूजा, यहाँ पर ये भी अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि योजना के तहत जो किसानों का प्रीमियम है उसे भी बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2%,
1: अच्छा,
0: रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम ही देना होता है, और जो बाकी प्रीमियम बचता है उसका वहन केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
1: ये तो बड़ी कमाल की बात है।
0: जी
1: और साथ ही साथ जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल का बीमा करा लेना चाहिए। इसका आवेदन बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन के समय आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण, भूमि और बोई हुई फसल की जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी होता है।
0: और पूजा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि यदि बीमित फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को निर्धारित समय के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को देनी चाहिए, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
1: बिल्कुल, इसलिए समय पर अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें। और इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो फिर अपने आसपास के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं।
0: और पूजा, साथ ही किसान भाई भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। खरीफ का मौसम हमारे देश की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों को सही समय पर, सही मात्रा में और संतुलित रूप से पोषक तत्व मिले। केवल उर्वरकों का अधिक प्रयोग ही समाधान नहीं है, बल्कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है और साथ ही साथ खेती और अधिक लाभकारी भी हो जाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलसाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम किसान वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, चर्चा का जो विषय है उसके अनुसार अपनी बातचीत को हम शुरू करते हैं। अक्सर किसान ज्यादा खाद डालने को ही अच्छी पैदावार का उपाय मानते हैं, क्या ये सोच सही है?
2: नहीं, ये किसानों का एक अपना बहुत ही गलत परंपरा या जिसको कहिए कि विचार है कि जितना फसल को आवश्यक हो उतना ही पोषक तत्वों को उसमें डालना चाहिए, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी एरिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी हो।
1: जी
2: जो हर खेत में या हर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे उनकी आवश्यकता
1: बदल जाती
2: बदल
1: है।
2: जाती है, और
1: जी
2: उसके अनुसार उनको प्रबंधन करना चाहिए। और इसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज्यादा अपनी मृदा का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, और उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट का, उससे या वहाँ पे जो केवीकेज हैं या जो आईसीआर के संस्थान हैं, या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें काम करती हैं, वो मिट्टी की जांच करके उनको एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन किसानों को लगता है कि उनके सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी है, तो वो उनका भी अनुरोध कर सकते।

0: सकते हैं। लेकिन सोयल हेल्थ कार्ड फ्री से बना के दिया जाता है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो वो बनाना उनके लिए अति आवश्यक है। अगर वो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसलों की लागत है वो बढ़ती है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। इसमें आप जैसे नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रेट के रूप में सोयल के अंदर लीचिंग होता है, वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में लॉसेज हो जाते हैं तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही नहीं करते बल्कि ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करते हैं, कुछ ये भी देखा गया है।
1: और डॉक्टर साहब, आपने भी बताया मृदा की जांच करानी चाहिए समय समय पर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच किसानों के लिए कितनी आवश्यक है और इसे कितने अंतराल पर हमें कराना चाहिए।
0: मिट्टी की जांच बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आज के समय में खेती करना कोई फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। लेकिन कितने अंतराल पे करवाएं, ये एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए लगभग ऐसा मानते हैं कि 2-3 साल के बाद में हमारे जो खेत है जहां हम काश्तकारी कर रहे हैं उसका फर्टिलिटी का जो स्टेटस होता है या कहिए कि पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, वो लगातार किस तरह की फसलें लेते हैं या उसके अंदर किस तरह के ऑपरेशन करते हैं किसान या कितना हमारी सोयल बह रही है या बाहर से आ रही है, तो वो चेंज होती रहती है। तो कम 3 साल के इंटरवल पे एक बार अगर उसको फिर से करवा ले तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, जांच के लिए किसान को कहाँ जाना होगा?
0: सबसे पहले तो ये है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उनके पूरे देश में कवरेज है, हर स्टेट का है, केवीकेज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ICR के अपने संस्थान भी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम करती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो कहीं भी किसान अपनी सुविधा अनुसार इनसे मिल सकता है, इनसे मिलके अपनी मृदा की सैंपल और पानी के सैंपल उनको दे सकता है। तो उसके पास में एक अपना जो सोयल का और पानी का ये रहता है कि हमारे यहाँ पे किस तरह का जो पानी है सिंचाई के लिए वो उपलब्ध है और हमारी जो मृदा है उसका न्यूट्रिएंट या उसका पोषक तत्वों का स्टेटस क्या है, तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने सॉइल टेस्टिंग के बारे में और सॉइल कार्ड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये विषय है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमारे सामने इस वक्त आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, यानी कि एकीकृत रूप से अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन को एक समग्र विषय के रूप में लेकर चलें तो उसको किस तरह से हम देखते हैं। दरअसल अगर उसे हम आसान भाषा में समझाना चाहें तो वो क्या है और हमारे किसान भाई बहनों को उससे क्या लाभ मिल सकता है?
0: देखिए, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम करते क्या है कि उसमें जैसे हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर और इन सब का जो हमारी सोयल के अंदर जिस पोषक तत्वों की हमारे पास सोयल हेल्थ कार्ड होता है जिनकी कमी होती है उसके अनुसार हमें कितना FYM या ग्रीन मैन्योरिंग या वर्मी कंपोस्ट या उसके साथ में सीड ट्रीटमेंट के रूप में बायो फर्टिलाइजर्स या चाहे एजेटोबैक्टर है, फास्फोर सोलिबिलाइजिंग है, पोटास सोलिबिलाइजर है या माइकोराइजा है या कुछ वाम वगैरह भी आती, तो उनका और प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया, फास्फोरस, DAP या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका एक समायोजन करते हैं कि ना उसको ज्यादा देते हैं ना कम देते हैं, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी फसल भी एक कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। इसलिए उनको एक समायोजित फॉर्म में हम लाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर और ये सब का इंटीग्रेशन।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में वर्षा अक्सर देखा गया है कि काफी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से उर्वरकों के बह जाने की समस्या रहती है, तो इससे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, उर्वरकों के बहने की जो ज्यादातर समस्या होती है वो नाइट्रोजन के केस में होती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की जो एप्लीकेशन है वो बुआई से पहले ही कर दी जाती है और उसका मृदा के अंदर ही ज्यादातर आज तक जितने भी किसान कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन होता है। लेकिन जो यूरिया वो बह के रन ऑफ के तो

0: अभी यूरिया की फॉलियर एप्लीकेशन किया है और बारिश हो गई 5-6 घंटे बाद में, तो भी वो बेकार नहीं जाता है, ना ही वो धूप के जाता है पूरा, उसी ड्यूरेशन में पौधा उसको मैक्सिमम ले लेता है। उसके बाद में जैसे नीम कोटेड यूरिया होती है, तो उनमें क्या होता है कि स्लो रिलीज होता है, बाकी तो क्या है कि पोषक तत्वों तो को बैठे एक ही समय में वो रिलीज कर देते, लेकिन उनको स्लोली रिलीज करते हैं, तो जो पौधों का अब्जॉर्प्शन का टाइम होता है,
1: जी
0: जैसे आज लगाया एक तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, एक 5-7 दिन तक वो बने रहते हैं, तो उनको समय ज्यादा मिल जाता है, तो वो ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेते
1: एब्जॉर्ब कर
0: हैं।
1: ले। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
2: तो पूजा, बात करते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं अपने आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर साहब, आपने नीम कोटेड यूरिया का जिक्र किया, तो एक सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या नीम कोटेड यूरिया ज्यादा उपयोगी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? और साथ ही साथ, चूंकि यूरिया का जिक्र हो ही गया है, तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यूरिया का सही उपयोग के लिए आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, इनका जो नीम कोटेड यूरिया है वो ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर की रिलीज करने का जो टाइम है, उसकी जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सोइल के अंदर, वो उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसका
1: स्लो रिलीज होता है,
0: स्लो रिलीज होता है, तो वही बेसिक उसका एक पर्पज होता है। तो जो भी किसान भाई, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी फसलें हैं, स्पेशली धान है, जिनके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट या जहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहां पे इनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस एरिया में, जैसे खरीफ अपनी वर्षा आधारित होती है मोस्टली, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और फिर भी उन सॉइल में थोड़ा बहुत यूरिया देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सैंडी सॉइल होती है तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। उस केस में क्या होता है कि उनको थोड़ा ही ड्यूरेशन मिलता है अब्जॉर्ब करने के लिए, वो कंट्राडिक्टरी भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये फायदेमंद ही होता है। नीम कोटेड यूरिया कुछ एरिया को छोड़ दे जिनमें बहुत कम बारिश होती है और इमीडिएट ड्यूरेशन के बाद में उनमें ड्राई स्पेल आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो खरीफ है इसके अंदर वर्षा आधारित ही एरिया होता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत इसका, बाकी तो ये सबसे है। और आजकल तो इसके लिए नैनो यूरिया भी एक विकल्प आ गया है, जो बहुत ही फास्ट और डायरेक्टली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, तो किसान भाई उसका भी प्रयोग कर।
2: और डॉक्टर साहब, एक पारंपरिक खेती तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ आजकल तकनीकी आधारित खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे में जो नई तकनीक आ रही है जैसे ड्रोन, सेंसर या डिजिटल कृषि, ये सब मिलकर पोषक तत्व प्रबंधन को और अधिक किस तरीके से प्रभावी बना रही है?
0: देखिए, ये बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज जितना भी हमारा जो फसलों का उत्पादन है उसके अंदर अगर हम उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी लागत कितनी आ रही है। और ये सब जो तकनीक हैं, डिजिटल कृषि है, आपका ड्रोन है, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर कौन सी समय किस पोषक तत्व की कमी है
2: जी,
0: और ड्रोन से हम कितने बड़े एरिया में तुरंत फॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, दूसरी भी कई तरह की पेस्टिसाइड।

0: वगैरह भी हम उसमें डाल सकते हैं, इवन वीडीसाइड भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा डिजिटल मैप है, खेत का भी है, फसलों का है, तो हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि फसल का हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, तो हमें देखेंगे कि जिसका कलर ऐसा है तो ये पोषक तत्व तो क्या हो सकता है, तो हमें
1: जी
0: इस चीज का स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हो। तो
1: डायग्नोसिस में आसानी रहेगी उससे।
0: डायग्नोसिस में भी है, और हमारा जैसे ऑपरेशन करते हैं
1: जी
0: वो समय भी बचाएगी, कॉस्ट भी बचाएगी, लेकिन उनकी जो इनिशियली कॉस्ट होती है, जो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जैसे ड्रोन है परचेज करना है या दूसरे,
1: जी
0: वो कुछ समय ज्यादा होता है। इसलिए किसान कुछ कर रहे हैं जो इनोवेटिव फार्मर हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की। हमने अपने श्रोताओं से वादा किया था कि आज हम उन्हें लोकगीत सुनवाएंगे, तो लगता है पूजा उसका समय आ गया है।
2: जी, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लोकगीत।

0: लोकगीत के बाद श्रोताओं आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आजकल चर्चा में काफी छाया हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसे में पोषक तत्व प्रबंधन की जो हमारी रणनीति है उसको किस तरह बदलना चाहिए?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हमारा अतिवर्षा या कम वर्षा की स्थिति भी पैदा हो रही है
0: जी।
1: उसके साथ में हमारा टेम्परेचर भी कभी ज़्यादा कम भी हो रहा है। तो ऐसे में हमें पोषक तत्वों को पौधों को डालने के लिए या उनको उपलब्ध करवाने के लिए हमें एक बहुत ही सटीक निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है
0: जी
1: वहाँ पे तो क्या करना होता है कि हमें पोषक तत्वों के अंदर कुछ जैसे नाइट्रोजन का ही ज़्यादा रोल होता है, उनको बार बार अप्लाई करना कि जैसे हमें जितना भी डोज देना उसको नंबर ऑफ स्प्लिट बढ़ा

0: देते हैं,
1: मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी
0: बढ़ जाएगी।
1: उसकी।
0: और
1: और
0: फॉलियर एप्लीकेशन के
1: जी
0: ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं, नैनो यूरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जहाँ पे शॉर्ट फॉल आ रहा है तो उसमें हमारी रिकमेंडेड डोज होती है। जैसे
1: जी
0: हमें पता है कि अभी ड्रॉट आने की स्थिति हो रही है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा जितना रिकमेंडेड नाइट्रोजन है उतनी लगाएं, क्योंकि अगर उतनी हम लगाएंगे तो उस एरिया में पहले से पानी की कमी
1: कमी है
0: है और
1: जी,
0: हमारी फसलें जल्दी सूख जाएंगी। तो
1: राइट
0: उस समय हमें जो रिकमेंडेड डोज या जिसको हम बोलते हैं जितनी चाहिए उतनी, उसे कम कर देते हैं, ताकि हमारी फसलें भले ही उससे जितना उत्पादन नहीं देंगी लेकिन
1: जी
0: कुछ
1: सूखेंगी
0: समय
1: नहीं।
0: लेट सूखेंगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक रणनीति होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जिस एरिया में ड्रॉट आने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट या जिसको हम बोलते हैं FIM, ग्रीन मैन्योरिंग या कंपोस्ट है, ये सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक मैटर भी सस्टेन रहता है।
1: जी
0: तो इसलिए इनका अगर समावेश करें तो ज़्यादा अच्छा होता है।
2: और डॉक्टर साहब, अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि खरीफ फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे अच्छा ये है कि किसान भाई अपनी फसलों को रेगुलर देखें। हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी है नहीं है, हमें यूरिया डालना है या नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि हम पड़ोसी लगा रहा है हम भी आके लगा देते हैं,
2: जी
0: नहीं, हमें ये देखना होता है कि अगर वाकई ही हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें LCC कार्ड भी होते हैं या हम कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और उससे हमें पता लग सकता है।
2: जी तो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर तुलसाराम जी। आपने खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी सलाह किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायक होगी।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ, अब हम अपने श्रोताओं को कृषि संबंधी सलाह भी दे देते हैं। चूंकि कृषि परामर्श कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को दिया जाता है, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का छिड़काव वे न करें और खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें।
2: बिल्कुल पूजा, और किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें।
1: जी और इसी के साथ इस मौसम में किसान भाई बहन स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल निकास का उचित प्रबंध रखने की व्यवस्था उनको करनी होगी।
2: और साथ ही वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह।
1: अब हम जिक्र बाजार भाव का भी कर लेते हैं। सब्जियों और फलों के मंडी के भाव का जिक्र करें तो सबसे पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। आलू का बाजार भाव 18 रुपए प्रति किलो है और प्याज 30 रुपए प्रति किलो है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, खीरा 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है और शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो पर आगे चल रही है।
2: पूजा, अगर फलों के आज मंडी के भाव की हम बात करें तो आज सबसे पहले सेब की बात करते हैं जो कि 200 रुपए प्रति किलो का भाव रहा। केले की बात करें तो केला आज 25 रुपए प्रति किलो के भाव में चल रहा है। अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो। पपीता की बात करें तो पपीता 30 रुपए प्रति किलो और तरबूज 22 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में बिक रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये है आज का बाजार भाव फलों और सब्जियों का। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और सिद्धार्थ, अब हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेनी होगी।
2: तो लेते हैं किसान भाई बहनों से विदा।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद लेते हैं चंद खूबसूरत सी गजलों का।

0: श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र को भी भर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 6ठा सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगी और हर बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सदन के समक्ष उपलब्ध कार्य के अनुसार बैठक की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, साथ ही नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी सूचनाएं नेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित DM कार्यालय में इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने कार्यालय में योजना की पात्र महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजना महिलाओं के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी की महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में टीबी हारेगा भारत जीतेगा राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जन भागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा और स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी में अब तक 3300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। साथ ही उनके सहयोग से 1,20,000 से अधिक पोषण आहार टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि टीबी का समय पर पता लगने और उपचार पूरा होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जांच, उपचार तथा परामर्श से वंचित न रहे। श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन अभियान एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदित्य के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या है। इससे पहले इस साल 8 जून को 12 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी ने आज शास्त्री पार्क कैंपस में कंक्रीट संरचना की मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जयपुर मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा दूसरे प्रमुख अवसंरचना संगठनों सहित 35 भारी संगठनों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
0: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसमें इंजीनियरों, शिक्षाविदों, इंडस्ट्री के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर कंक्रीट की मरम्मत, सुधार और रेट्रोफिटिंग में हुई नई तकनीकी पर चर्चा की गई। साथ ही CSIR, CBRI रुड़की और IIT मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों और उद्योग के बड़े संगठनों के जानकारों ने तकनीकी सत्र लिए। इस सत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन, टिकाऊपन बढ़ाने, मरम्मत के आधुनिक और उन्नत पदार्थ, जंग से बचाव और रेट्रोफिटिंग की नई तकनीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग शिक्षा जगत सहयोग के लिए एक बेहतर मंच प्रदान किया गया, जिससे इंजीनियर

0: शिक्षा में क्षमता निर्माण के प्रति दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के निदेशक, कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, सराय काले खान नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाए रखना है। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही 30 जुलाई 2026 तक सराय काले खां FOB पर मेट्रो रेल अधिनियम 2002 की धारा 59 के अंतर्गत कुल 56 चालान काटे जा चुके हैं। NCRTC सतत जागरूकता अभियानों और स्वच्छता नियमों के प्रभावी परिवर्तन के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से दिल्ली परिवहन निगम DTC की एक नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई बस सेवा निगम मुख्यालय से बांकनेर गांव तक आरंभ की गई है, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली वासियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता है। वहीं स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक विकसित और आधुनिक दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बचे कूड़े के शीघ्र निस्तारण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैंडफिल साइट के प्रवेश मार्ग को पक्का करने के आदेश दिए हैं, जिससे लैंडफिल साइट पर भारी वाहनों का सुगमता से आवागमन होता रहे। आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर हर रोज आने वाले नए कूड़े के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर लोगों से पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करते थे।
3: कंप्लेनेंट ने बताया था कि व्हाट्सएप पे उनके पास मैसेज आता है और कमीशन बेसिस पे अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताते हैं कि इसमें कमीशन बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हमने FIR रजिस्टर करी रेलेवेंट सेक्शंस में BNSS के और डेडिकेटेड टीम बनाई जिन्होंने फाइनेंशियल ट्रेल्स को देखते हुए CCTV की एनालिसिस करी और UPI ट्रांजेक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करा। इस पूरे प्रकरण में 6 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई और बाकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस भी मिले हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खिलाड़ियों से

0: बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे अपने खेल करियर से आगे बढ़कर भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी में योगदान देने का आग्रह किया।
1: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने नई दिल्ली में रायसीना बैडमिंटन अकादमी और पिकल बॉल एरेना का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम अच्छा रहा और राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8 बजकर, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम आज आप सभी के लिए प्रयोग कर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

बाघ को जन्म देने वाला बाबा, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के

0: होने वाले जम्मू और कश्मीर में तथा कथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान।

0: अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
0: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय

0: ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes registration of births and deaths amendment bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हका खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के

0: करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजीशन अरकान नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशाखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर मां कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तईं ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखादही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखादही मामलात से निमटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीकेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नजरसानी की है। नजरसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजाका खेज करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहां अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिला वजह हलाकतें हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं।

0: पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुत्तला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पीओजेके के बाग जिले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पीओजेके के में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेएएसी ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए यह बात कही। जेएएसी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद जिले के मकरी खित्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताजा वाकयात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे पीओजेके में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरिमीन को वापस भारत लाया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराय में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरिमीन से निमटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इकतसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाज़ किया कि साबका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरिमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमनो कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेत से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रूपये, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रूपये और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रूपये नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉ मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की 6 दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुताल्लिक इंदिराज की तरमीमें

2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखिर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजका खेज करार दिया है। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है।

0: सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel

फिल्म भक्त सूरदास से ये गीत अभी आपने सुना केएल सहगल साहब की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तानसेन से खुर्शीद की मधुर आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्म गीतों के मधुर गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनोखी अदा से, मुकेश और शमशाद बेगम की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि हम आपको पुराने समय के बेहतरीन से बेहतरीन गीत सुनवाएं। इसी श्रृंखला में हम आइए सुनवाते हैं हम आपको फिल्म बरसात से ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बूट पॉलिश से।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बूट पॉलिश से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आर पार से गीता दत्त की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म CID से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की

0: की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर अपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia

मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा, तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार

0: उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इनमें रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, कॉपीराइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी तथा संस्कृति, जलवायु और सतत विकास शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता आज से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुडा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays in and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. The 13th BRICS Education Ministers meeting and 3rd BRICS Senior Officials meeting will be held from today till Friday in Bhubaneswar, Odisha. The Education Ministry stated that the meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. Union Education Minister Prahlad Joshi will participate in the 13th BRICS Education Ministers meeting. Meanwhile, India will host the 3rd BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal today. The Ministry of Culture stated that the two-day meeting will gather representatives from the BRICS member country states to promote cultural cooperation and build consensus on key areas before the BRICS Culture Ministers meeting. Meta

0: गीत और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। ज्यादा 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईलाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः 4:20 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री उषा विजय कुमार का रागम चारुकेशी में गोट्टू वाद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज

बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। सुबह के 4:56 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग दीर्घ श्वास परीक्षा और आसन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी, 6:10 का वक्त रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 8।

0: रात 7:10 पर संगीतिका प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। नौ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। प्रातः 9:30 पर मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दस बजकर 10 मिनट का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद का और 11:10 पर सबरत प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास और सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान सहयोग, नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चित

आपातकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेन देन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग की दोहराई। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।

तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना,